0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। तेल पैदा करने वाले ममालिक के ओपेक प्लस ग्रुप के साथ अरकान ने ऐलान किया है कि वह जून में योमिया पैदावार के कोटे में 1,80,000 बैरल से ज्यादा इजाफा करेंगे। ये फैसला ग्रुप से मुत्तहिदा अरब अमारात के निकलने के बाद किया गया है। सऊदी अरब और रूस समेत ममालिक ने इतवार को एक ऑनलाइन इजलास के बाद ये बयान जारी किया। उनका कहना है कि वो पैदावारी कोटे में 1,88,000 बैरल योमिया इजाफा करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने कहा है कि वो पेट्रोलियम बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के साथ साथ ओपेक प्लस को भी जुमे के रोज छोड़ देगा। उसने इतवार के इजलास में शिरकत नहीं की। ग्रुप ने मई के लिए योमिया 2,06,000 बैरल का इजाफा मुकरर किया है। सातों मुल्कों ने कहा कि वो मंडी की सूरत हाल की करीबी निगरानी और जायजा जारी रखेंगे। जापानी वजीर खारजा मोतेगी तोशी मित्सु ने अपने ईरानी हम मनसब से इस मुतालबे का इरादा किया है कि खलीज फारिस में मौजूद बैरी जहाज जल्द अज जल्द बाहिफाजत आबनाए हुरमस से गुजर सके। मशरकी अफ्रीकी मुल्क कीनिया के दौरे के दौरान जनाब मोतेगी ने जापान के मयारी वक्त के मुताबिक इतवार को अलसुबह ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची से टेलीफोन पर बात की। ईरान की दरख्वास्त पर होने वाले ये मुजाकरात तकरीबन 20 मिनट तक जारी रहे। जनाब इराकची ने मोतेगी को अपने मुल्क के अमरीका के साथ तनाज़े के हवाले से मौजूदा सूरत हाल के बारे में वजाहत दी, जिसमें वाशिंगटन के साथ तजावीज़ के हालिया तबादले भी शामिल हैं। जनाब मोतेगी ने इसके बाद जापान की जानिब से इस उम्मीद का इजहार किया कि जंग बंदी बरकरार रहेगी और ये कि अमरीका के साथ ईरान के मुजाकरात जल्द बहाल होंगे, जो हतमी मुहिदे की तरफ ले जाएंगे। उन्होंने ईरान से ज्यादा लचक दिखाने का भी मुतालबा किया। मोतेगी ने मजीद कहा कि जापान इस बात को यकीनी बनाने को अहमियत देता है कि तमाम ममालिक के जहाज आबनाए हुरमस से आजादाना और महफूज तरीके से गुजर सकें। रवायती जापानी बुल फाइटिंग में बैलों को सींग लड़ाते हुए देखने के लिए तमाशाई इतवार को नीगाता प्रीफेक्चर के एक शहर में जमा हुए। इस इवेंट को एक अहम गैर मरई लोक सकाफती वर्षा नामजद किया गया है। वस्ती जापान में ओजिया और नागाओका शहरों में हर साल इसके सीजन के दौरान कई मैच होते हैं। ओजिया शहर ने इतवार को इस साल का पहला इवेंट मुनक्किद किया, जिसमें 36 बैल शामिल थे। मुकाबले में दो बैल आमने सामने होते हैं, वो मालकान की हौसला अफजाई के साथ सींग फंसाकर एक दूसरे को धकेलते हैं। बैलों को चोट लगने से बचाने के लिए हर मुकाबला बराबर खत्म किया गया। तकरीबन 1,000 तमाशबीन इवेंट देखने आए। 80 के पेटे के एक शख्स ने कहा कि उसने पहली बार देखा है और वो वाकई लड़ाई के ताकतवर असरात को महसूस कर सकता है। शहर नवंबर तक हर माह एक टूर्नामेंट का इनेकाद करेगा।
1: अब आज की चंद अहम खबरों की शह सुर्खियां। जापान और ऑस्ट्रेलिया के रहनुमाओं ने एक मुश्तरका ऐलामिया जारी किया है, जिसमें इक्तसादी सलामती में ताउन का खाका पेश किया गया है। रहनुमा खतूत तवानाई, अहम मादनियात, खुराक और दीगर कलीदी वसाइल के लिए फ्राहमी का तसलसल यकीनी बनाने पर मरकूज हैं। जापानी वजीर आजम ताकाइची सनाई ने पीर को अपने ऑस्ट्रेलवी हम मनसब एंथोनी अल्बानिस के साथ बातचीत की। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया के दल हुकूमत कैनबरा में हुई और तकरीबन 90 मिनट तक जारी रही। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुरमस से बहरी जहाज निकालने की तजवीज पेश की है, जिसे वो इंसान दोस्त अमल कह रहे हैं। और ओपेक प्लस के साथ अरकान ने ग्रुप से मुतहदा अरब अमारात की अलहदगी के बाद पैदावार बढ़ाने का ऐलान किया है। एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और वीडियोस के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

0: ड्रायर की कीमत पूछ रही है।
1: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
2: 9900円です。
1: え、高すぎます。
0: अब हारूसान की जंबील का कॉर्नर। आज का मौजू है जापान के करेंसी नोट और सिक्के।
3: जापान में चार अकसाम के कागजी नोट हैं। 1000 येन, 2000 येन, 5000 येन और 10000 येन। लेकिन 2000 येन का नोट ज्यादा आम नहीं।
0: अनवर साहब, जापान में हमें मुड़े तोड़े या बोसीदा नोट भी नजर नहीं आते।
3: जी हाँ, क्योंकि जापान का मरकजी बैंक बैंक ऑफ जापान पुराने नोटों को नए से तब्दील करता रहता है। खुसूसन 1000 येन और 5000 येन के नोट तो हर साल या दो साल बाद तब्दील कर दिए जाते हैं।
0: और माशरे में नए नोटों का खसूसी किरदार भी तो है।
3: जी हाँ बिल्कुल, शादी वगैरह जैसी पुरमसरत तकरीबात में मुबारकबाद की रकम देते वक्त नए नोट खुसूसी तहनियती लिफाफे में डाल कर देना आदाब में शामिल है।
0: ऐसे मौके पर नए नोट अच्छा तासर देते हैं। हमारे माशरे में भी ऐसा ही है, बल्कि हमारे यहाँ तो बच्चों को ईदी देते वक्त भी नए नोट देते हैं।
3: जापान में सिक्कों की 6 अकसाम है, 1 येन, 5 येन, 10 येन, 50 येन, 100 येन और 500 येन। जापान में जगह जगह चीज़ों की फरोख्त की मशीनें लगी हुई हैं जिनमें सिक्के इस्तेमाल होते हैं। तहम इन मशीनों में 1 येन और 5 येन के सिक्के इस्तेमाल नहीं हो सकते। दुकान से खरीदारी के वक्त तक वो आपकी जेब पर बोझ बने रहते हैं।